0: यह मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्दरा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामा? अब पंडित काल कोयल के वेलिये उपाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मातरान का எல்லாம் மாச சம்பளம்தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா.
0: ஓ, கோண
2: யாரு அவரா? அவரு
3: நல்லாரு நல்லாரு. நான் மடப்புடி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
2: வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா, வேணு சாஸ்திரி.
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன். எப்பா திருநாகரசே,
1: ஜன்மதின ஹ तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं?
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी, की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम।
3: ओ, पूसम। वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम वेरी बिग हीरोइन। तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी।
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो साक्षीनाथ टेंपल है।
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। ए, वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: எல்லா மூலியும் பேசுறா?
3: யார் இவாளா? இவங்க வடநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஏ, மந்திர கா படா பண்டிட ஹே, வேணு சாஸ்திரி ஜி.
0: வேணு சாஸ்திரி கா?
3: ஹான் ஜி.
1: ஏ லட்கா கோன் ஹே?
3: ஏ ஹமாரா மந்திர கா பெல் பாய் ஹே.
1: பெல் பாய்?
3: ஹான் ஜி.
1: ஏ தோ பேட் பாய் ஹே.
5: இன்ன பத்தியா வாட்டே தோ சொல்லி இருக்காங்க.
3: ஐ பூஜை கேங்க.
2: பேட் பாயா? என்ன
5: இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பைய கிடையாது.